در مرین مهرجه شیمی و بیشت مختمر

चित्रकूट आ पहुंचे थे। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्या पति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत विशेष रूप से कौशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास ये सुनकर मिथिला पति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौट कर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्थिति पर व्याकुल हो गए थे। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत

एक और वाद्य दिल रुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से सामने रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ रिकॉर्ड इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित साउथ वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य तीन आकार में प्रतीत है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दान का नाम रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य तार भाग होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाद के होला के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के होला के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबों हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। इस पर आर के पास तरफ के 5 तार तथा एक तरफ के तार दान के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दान के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगियों से कर्ण, खटका, मूर्ति, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला

और आकर्षक वाद्य है। किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिल रुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार से नई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का

और कई साधनों का उपयोग

सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत

कालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। कुछ बातें ये इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाए। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बात की, कितना ज्यादा समय आप

किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों

2020

समस्याओं के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस से जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम

लोक परियोजना के प्रसंस्करण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।

से सुसज्जित महाकाली लोग विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम करते हैं। कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया।

0: की विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी खतरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सत्यन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।

सौ पर। संचार व्यवस्था में तकनीक के विकास ने दुनिया को छोटा और जिंदगी को आसान बना दिया है। सूचनाएं देने और अपनों का हाल चाल लेने के लिए तमाम उपकरण मौजूद हैं। खासतौर से मोबाइल तो इतना सुविधाजनक है कि जिंदगी बेहद आसान हो गई है। अब तो पहली मुलाकात नहीं, औपचारिक अभिवादन के बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया बन गया है।

0: महीनों को दिया है वो भी गारंटी के साथ 40 लाख करोड़ से भी अधिक मुद्रा लोन से
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला।

नितम तकलीफ से मोबाइल तो अब उस तिजोरी की तरह हो गए हैं जिसमें सारे पर्सनल डिटेल्स, रुपए पैसे का हिसाब किताब और तमाम जरूरी जानकारियाँ सिर्फ एक टच की दूरी पर है। ये मोबाइल का एक अच्छा फीचर है, लेकिन जब इसी फोन पर आते हैं ऐसे संदेश जिन्हें किसी स्कीम के तहत पैसा डबल करने या आपके पैसे को सही जगह पर लगाने का झांसा दिया जाता है, तो तुरंत उनके बारे में जानकारी शेयर करना

मैसेज और सोशल मीडिया संदेश मिलते हैं जो पैसे को बढ़ाने की स्कीमें सिखाते हैं। कुछ संदेशों में तो अपडेट के लिए बैंक डिटेल्स या पॉलिसी नंबर भी मांगी होती है। इस तरह के संदेशों या फोन कॉल के निर्देशों या सुझावों पर अमल करना खतरनाक हो सकता है। जब भी ऐसा हो, बिना जांच पड़ताल किए कोई व्यक्तिगत जानकारी न दें और सावधान रहें उनसे जो मोबाइल के जरिए

0: पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। रोबिन जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिटी
1: दिख रही

0: सच्चा माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर

0: प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें दिलचस्प है,
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे
2: चित्र का

दूसरों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आवेदन 20 मई

0: जरूर मुझसे समझ जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नहीं सुने मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1800।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं, तो जैसे जैसे सूरज की पहली किरण फूटती रात में एक शार्प नोट शुरू होता है ना, और मध्यम शार्प नोट में कि अब इंसान को उठना है, हाथ धोना है, काम काज को, जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल।

estaba ahí, que sobre todo el extraño mío.

0: कर जुम खान की ओर से।
1: ये कौन कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी विमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
1: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या? दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। हे देवा, तुम कहां चले? पता नहीं क्या बात है। हाँ तो शुरू हो जाओ सर।

शिक्षक ने नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थी डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अच्छू, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दी। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में

अभिनय की शुरुआत की, जिसने संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी

disease

करते हैं, हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के सगे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था।

0: उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं था, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 जिला निगाह उठाते देखिए।

जाने यहाँ हम लोगों में कौन करीब है और कौन जहाँ तो भी ना जाने क्या होने वाला है दुनिया। आप खाने के बारह चीजें लूट मची हुई है चारों तरफ, लूट को देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हूँ। आपने वो खेले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको। अच्छा जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ, जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछो क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का जनता का हूँ। बाय द वे,

0: वर्मा जी के घर।
1: कौन शर्मा?
0: वही वो तुम्हारे जी की है।
1: आपका मतलब वर्मा जी से है?
0: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है?
1: दोनों मेरे डिग्री दोस्त।
0: क्या तनख्वाह मिलती है?
1: 125 रुपये।
0: 125 रुपये। और डी आर चलाऊँ तो
1: 50 रुपये।
0: 50 और 125, 175 रुपये मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते
1: हैं। सरासर सही है।
0: मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूँगा।
1: क्या नाम है तुम्हारा?
0: राम प्रसाद। राम प्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूँगा, पर इसकी कराने का इंतजाम करूँगा। आप तुम जा सकते हो।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में

0: können über die Schütze ja gar drin. Den Saal.
1: Alles Ilse? Und ist du hier hinzu? Ist das wieder bereit? Ist das eine Idee jetzt? Sag mal, aber was ihr hier hergesehen da, hein? Du hast es. Zeug Kalkatzah haben wir rast hier her. Delhi में एक नौकरी कर रखी है उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं आज यहाँ कल वहाँ तुम कहाँ जा रहे हो
2: ये भी कुछ तय नहीं किया
1: मकसद
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा तुम लोगों
1: तुम रहे वही देवदास अरे ठहरो पिछले दिनों के बाद मिले हैं मुलाकात को रंगीन किया जाए क्या ख्याल है
2: अब तो घोड़ा मिलाने के भी ख्याल ले रहे हैं
1: क्यों फजूल छोटे पैसे जाया किया जाए लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी थोड़ा पानी मिला लो
2: मैंने बिना छोड़ दिया है तुम लोगों
1: किसी ने अपने सर की खत्म तो नहीं दिला दी
2: ऐसी कोई बात नहीं है मैं बस नहीं पीऊंगा
1: अरे अरे मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया अरे कुछ कहते तो नहीं
2: क्या कहूँ चुनू बाबू मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता
1: तुम्हें क्या दुख है मैं अच्छी तरह समझता हूँ मेरा लेकिन ये ना समझो कि तुम्हें सुख कैसा
2: जब सुख की आज कहने वो रखती है

0: पर ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बनाई। मुख्य के किरदार में नजर आई थी।
1: आज ये फिल्म हमेशा है तुम बैठो ना लिया
2: कुछ नहीं चाहता जी, यूँ ही बात कर रहे थे तो राजकुमार नीचे आए थे ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
2: जी हाँ, मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
2: जी आज की क्या नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें कार छोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ जल्दी की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है।
2: सॉरी
1: क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा

0: जाल का क्या कार अभिनय।
1: तो क्या पागल बन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे काम के लिए क्या तुम?
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राजा नगर मैंने भेजा था उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में न पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर पोस्ट ऑफिस में एक डाइटी की नौकरी कर दी और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था, इसलिए तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाकर देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो अफवाह है। देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का

0: अच्छा था फिर मुझे इस रोल के लिए स्वीकार किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आँख से बहुत अपॉर्चुनिटी है।
1: जज हमारी अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की

जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया

sitting down

0: होती है मेरे मतलब मेरे को थी उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छी लगती थी। फिर नरेंद्र मीना जी का क्या था उनके से रोल में लगे थे एक टाइप प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी। वो रिंग उनको देखो तो दिल का चक्कर कहीं नजर इधर उधर नहीं जाते थे वो नहीं कुछ जीतते बड़ी ग्रेट फिल्म बनाने में पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ वक्त सिन्हा बहुत अच्छे थे और माला सिन्हा नंदा ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है मगर उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
1: अच्छा क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई

0: रहती थी। और कहानियां रची पड़ी है कि के दो भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी नेचुरली, माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है और इट वॉज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट, और आजकल के जो आर्टिस्ट मेल या फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
1: आपका एक बेटा है, बेटी है,
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्या कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का ही लड़की हो बस।
1: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, सभी देखते हैं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आए तो कहने लगी जी प्यासा में ऐसी है प्यासा में, मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना, तो बोले टोरंटो में देखो। मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा, तो बोले नहीं कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में वो प्यासा कैसे दिखाई गई, तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आजकल वेरी प्राउड से वहाँ क्या बात है, तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही है और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब दीदी और गुलाम देखना चाहते हैं।
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया और साहब दीदी गुलाम का भी आया, साहब दीदी गुलाम का, तो इन दोनों में कोई किसी फिल्म का क्या हो रहा है?
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में आने जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
1: मन को

0: 最近有人会讲说你有点那些，我可以，我就想问你一个问题，我准备如何
1: 在接下来？我只能说，不太清楚，因为现在也是比较紧张，所以我也不知道，这些不然，那么就没有去黑起我们的事情，那么我今天讲讲他们谁来的呢？वो देख रही और उनकी एक अजीब बात थी उन्होंने मुझे कहा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के कि उन्होंने जिंदगी में कभी चिप फल नहीं खाया वो फल खा नहीं सकते क्योंकि उसकी खुशबू से तक उनको मची तो पहली बार सुना मैंने इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जो बहुत क्रैक किया करते थे इट वाज अच्छा

सिंपल वर्ड है, मगर मीनिंग उसकी फिलोसफी में बहुत डेप्थ। और आप मानोगे नहीं, आज की कला फिल्म बनी थी, मतलब एक फिल्म बनाना मुझे है तो

प्यारे रिश्तेदार गाने जो अलग अलग दौर की शुरुआत से शुरू हो गए हैं। इनमें रोमांस है, जीवन की शुरुआत है, किसी की सुंदरता है और मोहब्बत की नजर है। सबसे पहले सुनिए 1991 की फिल्म Thank you.

before the upcoming

ವಿವಿಧ ಭಾಗ

0: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।

आकाश 98 से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: इसके छोटे उद्यमियों को दिया है वो भी गारंटी थी 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को

बेहद सुरीली और रोमांटिक बारिश की फुहार लाते हैं। उन्नीस सौ इक्यासी की सुपरहिट फिल्म चश्मे बदले के गाने गीत सुनते हैं। मिस्टर और हेमंत शुक्ला के बारे में यह जोड़ी बिल्कुल छू जाती है। संगीत

Oslavljate bahar.

लगता है रंग उपलब्ध है। साल का नहीं है जब प्रकृति बेरंग होती है। लेकिन इन दिनों गर्मी अपने पूरे जवाब में है और ऐसे में हमारे घरेलू बगिया पानी के अभाव में खिचक तो डांस या गर्मी सहने वाली कुटिया सूर्यमुखी या जिनिया तक की सीमित हो गई है। वैसे मन को जो खुशी महसूस हो उसके लिए किसी विशेष बाल क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं। ये तो आसपास के झूमते जाते पलाश अमल चांदल और गुलमोहर को देखकर ही बार बार हो जाता है। रखने वाले ये खुद ब खुद सिलसिले मिलते रहते हैं। मानो ये बतलाना चाहते हो कि पेड़ पौधे तो धरती के संरक्षक हैं। मान अपमान से परे अपनी गरिमा स्वयं बनाने वाले प्रकृति के सानिध्य में ये बेहतर हमें सीखना चाहिए कि विविध रंगों को हम अपनी जिंदगी में

जिनके लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, पर्यावरण के लिए सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं है,

कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए समर्पित है।

कर्मियों का सम्मान करना चाहिए, उनके कार्य की सराहना करनी चाहिए और स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान भी देना चाहिए। उनके कार्य की सराहना करनी चाहिए और स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान भी वे देते हैं। कचरे को सही जगह पर फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम उन सभी सफाई कर्मियों को धन्यवाद दें जिनकी मेहनत से हमारा जीवन अधिक स्वच्छ और सुरक्षित बनता है। याद रखिए श्रोताओं, स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि एक

अंतराल से बड़ा सफेद से स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। इस कथन में आज अपना साथ आपके अपने दोस्त श्यामल का तो आज इतिहास की हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका नाम सुनते ही वीरता की एक अद्भुत तस्वीर हमारे सामने उभर जाती है। हुआ था उनका बचपन का नाम रानी करने का था, जिन्हें से मनु कहा जाता था। बचपन से ही वे निडर, साहसी और आत्मविश्वासी थी। उन्होंने और युद्ध करने में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बनी। लेकिन जब अंग्रेजों ने लेफ्ट की नीति के तहत झांसी को अपने अधीन करने का प्रयास किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने इसका डट कर विरोध किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी

और श्रीलंका ये गीत की बात करेंगे कि शंकर महादेवन की आवाज में रत्न ज्योति के बोल संगीत संचन एहसान और नायिका मुमताज महल के जाने के बाद शाहजहां ने उसकी याद में विश्व प्रसिद्ध

विश्वसनीय सलाहकार मानते थे। मुमताज अपने पति के साथ हर जगह जाती थी। कहा जाता है कि मुमताज के मृत्यु के अंतिम क्षणों में मुमताज महल में शाहजहां के दो प्रमुख वादे हुए। पहला, वो उनके निधन के बाद दोबारा शादी नहीं करेंगे और दूसरा, उनके याद में एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जो दुनिया में अनोखा और बेमिसाल हो। अपने बेगम के निधन से शाहजहां पूरी तरह टूट गए और गहरे शोक में चले गए। अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने उनके दूसरे वादे को पूरा किया। उनकी याद में आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जो आज प्रेम के प्रतीक के रूप में विश्व के साथ अजूबों में गिना जाता है।

कम से कम आधे घंटे तक योग कर कई बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नियमित रूप से कम नमस्कार कर हृदय पेट घुटना और मसल को ठीक रखा जा सकता है। भ्रामरी ताड़ासन और नारी शोधन जैसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम भी कहते हैं, नियमित रूप से करना चाहिए।

को स्थिति रोग से किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण ज्यादा चिंता करना है। देर रात मोबाइल पर व्यस्त रहने से भी नींद पूरी नहीं हो पाती है और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती है, तो ऐसे में आधे घंटे का ध्यान कर इसे कम किया जा सकता है।

एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने साथ की खूबसूरती और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृता अटारी राव की। अमृता राव का जन्म 1981 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में अब के बरस से की। हालांकि उन्हें अपनी पहचान मिली इस फिल्म से। इस फिल्म ने युवाओं के बीच उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद अमृता राव ने मैं हूं ना, विवाह, वेलकम टू सज्जनपुर और जॉली एलएलबी जैसी कई सफल फिल्मों में भी काम किया। खासकर फिल्म विवाह में निभाया गया उसका उनका पूजा का किरदार दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। अमृता राव को उनकी सादगी, पारिवारिक छवि और प्रभावशाली अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा ऐसे किरदारों की

से चलना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ती है। बैठक के दौरान

0: से सहयोग को मजबूत करने तथा आर्थिक जितने क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों के लिए व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार में से राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ क्षेत्रीय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आयोजित सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस से जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, रेडियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष और चार यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष

की केंद्र सरकार देगी छह राज्य मिलकर वही करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उत्तर उम्मीदवारों के लिए विभिन्न व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम के बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलू और वी पी शिव कोलुंडू तथा भाजपा विधायक जी एल एस राजशेखरन को उप राज्यपाल कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.6 डॉलर हो गई है।

सवेरे समय शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सत्य के कार्यक्रम यादों की महफिल आप सभी का बहुत बहुत

Anonymous.

पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादें की महफिल।

0: तो आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की बोल के साथ मशाल संकेत की से हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।
1: इनकी बातें की मधुरता से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से

0: बोल अक्षय रहे थे राहुल देव बर्मन की तर्ज के साथ लता मंगेशकर की आवाज समीर आसमान फिल्म की इस गीत में आपने सुनी। कार्यक्रम यादों की लहर पर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं समय कार्यक्रम यादों की महफिल।

प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन। उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर

0: शरीर एक मनुष्य के देखने को समझ में नहीं।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाए।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने वाले पेंटर अखिलेश से एक बात की,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे
2: पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादें।

सुन रहे थे आशा और शब्बीर कुमार की आवाज है आनंद बख्शी के बोल अनु मलिक का संगीत कार्यक्रम यादव के महत्व जगत भूषी पर आप सुन रहे हैं और मेनू कार्ड गीतों का मेनू कार्ड नहीं बल्कि मेनू कार्ड नामक नाटक आप सुन सकते हैं। रात आज बजे हवा महल में मूल कहानी लिखी ओ हिंदी में जिसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है मुरली मनोहर जोशी ने और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। तो आज रात 8 बजे सुनिएगा नाटिका मेनू कार्ड हवा महल में और इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम यादव के महत्व। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

की आवाज में ही दीप कलहारा ने सुना कर बिहारी के बोल लक्ष्मीकांत त्यागीलाल का संगीत। इसके साथ ही त्यागी की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेस्ट क्या है। तो आज की इबारत है हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहाँ जरूरी है। अब आप ये सोचिए कब कौन कहाँ किससे क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा ये कोई जानता है भला नहीं। ये जानकर भी कुछ सवाल और जवाब अनजान से राहों में भटकते रहते हैं। जैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों या कहीं की जब से सुरीला सफर शुरू हुआ है तो हम एक इबारत रोजाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/pbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफर की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।

लेकर ये अंदाजा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली है। सुरीला सफर में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही है, लेकिन हमारे साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के कथा। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथी ने बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो जरूरी है तो गीत आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल, तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, क्या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि किसी को पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी, किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसमें आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाजा तो लगाया है, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, आवाज किसकी है ये पहचानिए।

मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे। हमारे साथी ने ये भी बताया कि अनूप कुमार पर फिल्माया गया है ये गीत, तो बिल्कुल सही जवाब। वही हमारे साथी कहती है कि इतने सारे सवाल एक साथ धीरे धीरे पूछते सवाल, तो भाई एक साथ इसलिए हमने सारे सवाल आपसे कह दिए ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जवाब देते रहें, और अगर आपको चाहिए तो बीच बीच में हम अपना सवाल दोहराते ही रहेंगे। वैसे हमारे साथी भी कह दिया है कि उन्हें ना पसंद आने वाले सवालों में से पुरुषों के लिए उनकी आय और महिलाओं के लिए उनकी आयु, ये सवाल पसंद नहीं आते। जैसे हम कहेंगे तो इसका उल्टा भी हो सकता है, भाई महिलाओं के लिए अब उनकी आय ना पूछी जाए और ना ही पुरुषों से पूछी जाए उनकी उम्र, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही हमें छोड़ देने चाहिए। वही हमारे साथी कह रहे हैं सवालों के वहाँ पर तो कई फिल्मों में गीतकारों ने गीत लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार समय के अनुसार गीत चालू किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस गीत में पूछा गया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक सवाल था। लेकिन जब कोई हमारे मन के द्वारे या कहें कि घर के द्वारे तक आ ही जाता है तो हम पूछते हैं उससे सबसे पहले एक सवाल, और जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले भी वही सवाल पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, तो अगर आप वो गीत पहचान सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि शायद सभी के लिए है, और इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको हमें बता रहे हैं।

Oram sendiri mukti kemasyarakat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होगा मतदान। सपक्ष से राजनाथ राम और ग्राम का प्रथम निर्दलीय के रूप में परिणाम लगवाएंगे उम्मीदवार। राज्य विश्वविद्यालय अकादमी काउंसिल की आज होगी बैठक। नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स समेत सभी प्रस्तावों को होगी चर्चा। रांची में चल रही झारखंड T20 क्रिकेट लीग में रांची टाइगर्स ने धनबाद डायमंड्स को और संथाल सल्टस ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हरा कर दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सुरक्षा मदद करेंगे और घर जोड़ेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय रांची के आयुक्त हरि कल्याण ने बताया कि इस योजना के तहत रांची और बोकारो के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबसे सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनवरी 2024 में स्वच्छ

वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। भीड़ को मनुष्य लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।

सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के तहत बुराने बाद

Muchas gracias, buenas tardes, Sandra. Gracias.

0: और उसके पश्चात क्या उठा है क्या सुविधा नहीं है, जब भी सुविधा नहीं है उसको प्रदान किया जाएगा। तो जो भी आसपास किसान है उनका सुनिश्चित कराया जाएगा जिससे कि और भी किसान प्रेरित हो सके।
1: बाजार में आज कम से 341 अंक बढ़कर 77,175 पहुंच गया, जिसके लिए 89 अंकों की जीत के साथ 24% पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई।

folks across the firm that I want Christmas to want to go here with the guys to the staff. All of it's so good because for me, most of the month is by the pay. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सौंपेंगे प्रोत्साहन राशि। राशि और बफरों के कर्मी भी होंगे लाभान्वित। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होगा मतदान। सत्ता पक्ष से बैठ

¿saben qué? Han estado llenos de dólares.

तरह से गीत मेरे होठों पे आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई। उसी तरह से हमारी साथी कह रहे हैं कि सैलरी के बारे में पूछना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आता। वही हमारी साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो ना पूछे जाए। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ तो डर के मारे भूल जाते थे। फिजिक्स वाले सवाल का जवाब पूछते थे तो डर के मारे नहीं बता पाते थे। आते हुए भी पता नहीं क्यों हम उनसे डरते थे, बाकी सब टीचर से मस्त आराम से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि आपने सवाल क्या पूछा हम तो समझ नहीं पाए, तो ठीक है फिर से हम आपको सवाल तो दोहराने वाले ही हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखें, आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे उसे समय स्वयं जवाब देगा। वही हमारी गौर साथी ने लिखा कि कभी किसी स्त्री से कोई पूछती ही नहीं की जाती कि तुम क्या चाहती हो, मशीन की तरह घर के बाहर के काम करते रहती है परिवार के लिए, अगर अनपढ़े तो कमाने भी लग जाती है, लेकिन सभी बातों में एक सवाल अधूरा ही रह जाता है कि तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल बहुत ही जरूरी सवाल आपने मुझे भेजा, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता, किसे जरूर पूछना चाहिए। वही एक और जरूरी सवाल है जिससे रोजाना हम दो चार होते हैं। हमारे साथी ने लिखा, मुझे रोज एक ही सवाल परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और जब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बना लो तो ये कुछ भी क्या होता है। वाकई तो ये कुछ भी क्या होता है ये सवाल जो है उनके मन में चल रहा है, और खाने में क्या बनेगा ये भी उनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपका मनचाहा गीत हमारे गीत के साथ शायद मैच हो जाए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का गीत। जी बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुरीला सफर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें कह रहे हैं और अच्छा सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। उन पर हमारे साथी कह रहे हैं कि जब इनका जवाब नहीं देते बनता है, इस पर भी हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी पूछे कि क्या बना कैसी लग रही हूँ तो उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। वहीं वो कह रहे हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस प्रश्न का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो कुछ मुश्किल सवाल जवाब के बारे में तो उन्होंने लिखा। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और हरदम पूछा जाता है कि लाडला कौन है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि माँ को अपने संतान के समान प्रिय होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब उम्र पूछा जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अपनी उम्र खासतौर से लड़कियों से अगर पूछी जाती है तो ये सवाल सही नहीं लगते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा बच्चा प्यारा है जब पूछा जाए, या किसी ज्यादा भाई बहन से ज्यादा आपकी किससे ज्यादा दोस्ती है ये पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन से गाने आपको पसंद है लता जी के, रफी जी के, या किसी भी इस तरह से गायकों के नाम लेकर पूछा जाता है, या कौन सा फिल्मी गाना अधिक पसंद है। इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। वहीं हमारे कौन साथी कहते हैं कि जीवन में इस तरह के सवाल जवाब यानी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों मेरे साथ क्यों, ये बहुत होते हैं। दुख सुख के सुर को आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि वो है जो ये समझ सके कि कुछ चीजों को वक्त के भरोसे छोड़ देना और इस सुरीले सफर का मजा लेना ही जिंदगी है। ना इच्छा की खबर है, ना इंतहा का पता है, जिंदगी बस एक सुरीला सफर है और तू ही मेरी रहनुमा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जवाब हमारे साथी लिखे रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा जवाब है, किस तरह का जवाब है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। या एक और बात आप बता सकते हैं ये कि अगर खुद से कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि कई बार हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, या इस तरह के सवाल होते हैं, तो अगर आप खुद से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल क्या होगा। मान लीजिए कि आज ही आपको अगर अपने आप से कोई सवाल पूछना है तो ये बताइए कि वो सवाल क्या होगा। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुना दें, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई हम सभी को मिले हैं, लेकिन हमने तो आपसे आपका हाल ही नहीं पूछा। तो हाल पूछते हैं ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कि इस प्रसंग में नायक

फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। और इस फिल्म में नायक नायिका किशोर कुमार और मधुबाला इस गीत में नजर आते हैं। और हमारी साथियों ने तो इतनी सारी गाड़ी चला दी है सवालों की, उन्होंने तो हमसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। भाई एक सवाल मैं करूँ, एक सवाल तुम करो, जो गीत हमने सुनवाया उसका ये थोड़ी था कि आप हमसे सवाल करते ही चले जाए। देखिए आपके पास तो जवाब देने का ऑप्शन उपलब्ध है और आप देते रहते हैं जवाब। हमारे साथी ने कहा कि अज्ञात फिल्म ने बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं और सवाल पूछते हैं तो शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज का लहजा और आंखों की चमक मायने रखती है। सवाल चाहे जो भी हो, अगर उसके पीछे सच्ची आत्मीयता है तो सामने वाला अपनी हर चित्र भूल कर मुस्कुरा देता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के लिए सवाल जवाब बहुत कठिन रहते हैं, ना तो सवाल समझ में आते हैं ना जवाब। वही हमारे एक और साथी है, वो कह रही की उनकी घर में एक छोटी बेबी है, बच्ची है उनकी, और उनकी पोती वो हो सकती है। और वो जब सवाल पूछती है सवाल पर सवाल तो उस नन्ही तरीके के सवालों के जवाब देते देते थक जाते हैं, लेकिन उसके सवाल बिल्कुल भी नहीं खत्म होते। लेकिन इसी तरह से तो वो अपने जान पाएंगी दुनिया को और आस पास के लोगों को। वही हमारे साथी कह रहे की बेसिर पैर बेटुका सवालों सवाल पसंद नहीं आते, परिचर्चा के विषय वस्तु से दूर अवांछनीय सवालों से इन्हें छेड़ है। हमारे साथी ने यही पूछा है कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सवाल जरा छोटा सा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप दोबारा तैयार करते हैं तो उसे बहुत कुछ सोच के आते होंगे, पर प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ अलग हो जाता है संदेशों के साथ, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप सभी का साथ मिलता है तो जो भी हम सोच कराते हैं उससे ज्यादा अच्छी हो जाती है सोच, और कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग जब मिलता है तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप सभी के सहयोग से ये सवाल जवाब जो हो रहा है या कहें कि ये कार्यक्रम जब होता है तो आपका सहयोग भी पूरी तरह से होता है, तो 50-50% पार्टनरशिप से चल रहे हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए और वक्त इतना सटीक हल निकाल का जवाब देता ही है। वही हमारे एक और साथी कह रही है कि डाइट में भी आपकी ड्यूटी होती है क्या, जैसे रेलवे में होती है। और हमारे एक और साथी पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन तय करता है कि कौन आएगा सुरीला सफर में, तो ये विरोधाभास से जुड़े जो भी सवाल आपने पूछे उसका जवाब तो आपको यहीं आकर मिलेगा। तो अगली बार जब आप आए तो यहाँ की सैर पर आइएगा और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफर है तो मृत्यु क्या है। भाई बहुत ही गहन सवाल है ये और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, पर इससे तो सोचना बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है। वही हमारे और साथी कह रहे हैं कि नए दोनों के साथी अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं वो नहीं पूछने चाहिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे और साथी है वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला भी तो हो सकता है,

तो भाई लड्डू वड्डू ही मिलते हैं, मिठाई मिलती है, करेला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत में आवाज किसकी है ये तो आप बताएंगे ही, साथ ही आप बताएंगे फिल्म का नाम भी।

फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी लिखते हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी दादा अच्छे लगते हैं या पापा, वहीं हमारे साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ लेता हूँ, जन्म के समय आत्मा मिलती या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से, और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे साथी ने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है, तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती है, विवाहिता होती है, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी इस तरह की बातें नहीं पूछनी चाहिए कि कभी भी कोई अगर कोई गर्भवती भी है तो उससे भी नहीं पूछना चाहिए कि गुड न्यूज कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी जिनकी भी संबंधित होती है परेशानी, उन्हें परेशान करती है, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वही हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं जिसमें शहर और गाँव में बरसते हैं और पूरा गाँव शहर दर बदर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो जरूर देना है। इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेज कर ही हमारे साथी दे देंगे, तो जिस साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह से सवाल वो पूछना चाहते हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगे, और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए, और अपने आप ये सोचिए कि आप जरूर कर पाएंगे उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले और कुछ आराम।

चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के देखने को समझने में। कुछ वाक्यों जो इतनी दिलचस्प थे कि आपको इसने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जाने वाले पिक्चर अखिलेश

समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहिला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी है। अन्य कोई साधन नहीं चार्ज हो सके, बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे। सुनेंगे रेडियो सेट पर से प्रोग्राम, शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे जवाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे कॉल साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, आज की क्लास में शून्य नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। नहीं तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती, फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वही हमारे कॉल साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब में बचपन में पिताजी की मार याद दिलाती है, जब वो गणित पढ़ाते थे

से जवाब देता था। वहीं मारी कौर साक्षी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से तो कहाँ जा रहे हो, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी कौर साक्षी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी, जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हो, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो सकता है। इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगे तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत, और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, उनका नाम भी।

साथी ने लिखा है कि आज की बारात एक ऐसे तत्व को उजागर करती है जिसके तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वही मालिक और साथी कहते हैं कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुसरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निष्फल पक्ष है जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए क्योंकि उससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वही हमारे और साथी कहते हैं कि आज की भारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न उत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। और साथी कहते हैं सवालों जवाबों में उनकी जिंदगी आज आपके मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए। एक कंपनी में सर्वे करवा था, कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए या उनके साथ नहीं गया। आज उन्हें बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिखी थी, इसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वही हमारे साथी का कहना है कि रोज अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हां में होता है पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी और साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि टेढ़ा जवाब देता है बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिखता है कि जिंदगी वाकई कब कहाँ कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक उनके अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा सिर रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की स्थिति में जीवन की सबसे गहरी सीख छिपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का है।

अर्थव्यवस्था में तकनीक के विकास ने दुनिया को छोटा और जिंदगी को आसान बना दिया। सूचनाएं देने और अपनों का हाल चाल लेने के लिए तमाम उपकरण मौजूद हैं। खासतौर से मोबाइल तो इतना सुविधाजनक है कि जिंदगी बेहद आसान हो गई है।

तकनीक के मोबाइल तो अब तिजोरी की तरह हो गए हैं, जिसमें सारे पर्सनल डिटेल्स, गूगल पैसे का हिसाब किताब और तमाम जरूरी जानकारियाँ सिर्फ एक टच की दूरी पर हैं। ये मोबाइल का एक अच्छा फीचर है, लेकिन जब इसी फोन पर आते हैं ऐसे संदेश जिनमें किसी स्कीम के तहत पैसा डबल करने या आपके पैसे को सही जगह पर लगाने का झांसा दिया जाता है, तो तुरंत उनके बारे में

सोशल मीडिया संदेश मिलते हैं जो पैसे को बढ़ाने की सीमित सिखाते हैं। इस संदेशों में तो अपडेट के लिए बैंक डिटेल्स या पॉलिसी नंबर की मांगी होती है। इस तरह के संदेशों या फोन कॉल के निर्देशों या सुझावों पर अमल करना खतरनाक हो सकता है। जब भी ऐसा हो, बिना जांच पड़ताल किए कोई व्यक्तिगत जानकारी न दें और सावधान रहें उनसे जो मोबाइल के जरिए आप पर नजर रख रहे हैं।

0: से कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कि मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस वर्ष 2025 छब्बीस में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3-1 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। G7 नेताओं ने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जलजमरो मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+4 नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल थे जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2020 में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों से क्षेत्रीय और वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर अगर जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई वायरल में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्चुअल सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का।

0: she's a beast off here. She doesn't get it.
1: You grow fish, that's been very good.
2: पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिश है न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में

इसका प्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों अभिभावकों को घोटाले वालों

ने हाउसकीप कर गेंदबाजी का फैसला किया है। ज्यादा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर के अंदर लिए है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीग में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया।

छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा

0: तलत महमूद की आवाज समुद्र भानी के बोल जय देव का संगीत
1: की
0: 1778 में मेरे पिताजी

0: मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया? गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आर्ट से बहुत अपॉर्चुनिटी है।
1: उजाली उसकी जादू की इस कार्यक्रम में जग भरे अभिनेता सदाशिव अग्रवाल।

0: क्या हो रहा है?
1: इसी जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार लखनऊ।

0: आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प थी कि आप खोज मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है। जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं जान सकते हैं। आज के रविवार 24 जून शाम 4 बजे
1: मेरे सहकर्मी सर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

0: स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एक्सेलेंस योर डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का
0: देश की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाते तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार लखनऊ। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में सीआईडी संसदीय गीत, मधुरी सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

गीता अपने सुना मध्य प्रधान प्रति बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 संसद गीत। चैलेंज में से लिखा है शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

थोड़ा सा अभी बीच बीच से बात की है कि अविलंब एस आई पी गठन करके अविलंब जो अभी मानसिकता के जो अभियुक्त है उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी तरह के किसी भी सामाजिक संगठन दबाव किसी की हिम्मत ना हो इस तरह का हमला।

कल्चर है उसको बचाने के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए उसी को और मजबूती के साथ में हम लोग बनाने के लिए हम लोग संजय हम लोग दूसरा स्थापना दिवस में हम लोग मनाने के लिए पहुंचे हैं।

आकाशवाणी के रांची केन्द्र से प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। श्रोता हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केन्द्र से 108 MHz।

0: का नमस्कार मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। शंकर जी, आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सर नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस बहुत गर्मी है,
0: इसीलिए धरती गर्म हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले थे, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मजबूतीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस है, पर चर्चा करेंगे।
1: मंदिर है, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम कहना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर हरियाली रोकने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं स्कूल में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं,
1: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
0: बिल्कुल, और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचे तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय हम था वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द, तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं। इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं खासतौर से बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, न कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है, तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम तो बहुत एक दूसरे क्या क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं
1: और माए बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं
0: और उसका असर क्या होता है, ये भी बताइए।
1: यही कहीं कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं कि विभाग के फेसबुक पेज पर जाते हैं ना।

0: पूरा मन उड़ेल देते हैं
1: जी,
0: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ है वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितना कितनी दोस्ती करानी है ये भी बताएं।
1: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी होगी,
0: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोट पैड बनाए और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं। वो भी एक जरिया है क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पका सकते,
1: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाली साड़ी का सिलसिला में, आज मैंने बांधी ही साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले चर्चा करने से पहले गीत हिंदी सुनते हैं और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत अच्छी हो जाती है, किताब की शक्ति में होती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ति में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना

0: की आवाज थी। मजनू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत था। वही मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजिली जी, लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियों में बताया हमें लगता है कि देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संगीत होते हैं उनको भी हमें वहाँ से निकाल के लाना है अपने पास और उनको भी देना है, तो उधर मंजे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मेरा दिमाग लगा हुआ कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व वर्षीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में, तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी और सब्जियाँ फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है हमारा जीवन।
1: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है इसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में भलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है, जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत आज भी लहलाते हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में अगर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी।
0: बिल्कुल सही बात है, और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत ही विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसमें एक मुहिम चलाई गई और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संरक्षण का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर की भूमि भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य यह है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहाँ पर सूखा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहाँ पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश है जहाँ पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोक सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं।
0: जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते के गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर फसलों पर असर तो पड़ते ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं है, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए।
1: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहाँ हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है।

पार्टी ने इस हाउस में। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका ये कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो न के बराबर होती है, जो एकदम जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं है वहाँ

0: से वो आ रहा है पानी उस जगह के ढलान से, तो वहाँ इकट्ठा कर रहे, तो वो बर्तन धोने पर धोने के काम
1: बच्चों में तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा कर रहा है, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है।
0: बिल्कुल कहा जाता है कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे फसले में ज्यादा भर गया है,
1: हम बच्चों को छाता उल्टा कर देते थे।
0: हाँ, ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सूखा है, वहाँ उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल,
0: और इन सब चीज़ों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत अभी अभी आपने कहा कि खाद की बात कही थी मुझे जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है गोबर, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था, तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें ज्यादा सुनवा देते हैं गाँव को।

0: कुछ सेगमेंट है बात करता सबसे पहले है, तो आज हम चर्चा करेंगे सारी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए। बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है,
1: मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियाँ देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई अच्छी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत अच्छा रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए, तो उनका पहनने का एक अपना अलग मज़ा होता है। और जैसे आज गर्मी का मौसम है तो इस समय बस याद रहता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी गुलाबी और क्या कहते हैं हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियाँ हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, सोचने लगे लगेगी
0: सही बात है।
1: तो कहते हैं ना मंत्र जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है। और बांधनी या बंधेज जिसको कहा जाता है, वो साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती है, और साथ में कुछ महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांध कर बनाया जाता है, और जिसके रंग तार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन में तैयार करते हैं। और उसको हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है, कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब काफी मेहनत लगती है और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जार्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बांधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और फोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है। हर तरीके की इसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बनाई बनाई जाती है इन साड़ियों।
0: तो गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटक लाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकर होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है, कच्छ के आदिवासी आकृतियाँ आमतौर पर काले और लाल रंग में जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
1: और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख

0: नौकरी उसके ज्यादा राजस्थान राज्य में बहुत प्रसिद्ध है और इंडिया बहुत बारीक होती है और पृथक रंग की होती है तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व है त्योहार उसके ऊपर भी कुछ पहनी जाती है और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है
1: बिल्कुल
0: और बहुत जरूरी है और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं

1778 में मेरे पिताजी सदाशिव

0: था कि मुझे इस रोल के लिए चुना। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिटी थी।
1: उजाली उसकी यादों की इस कार्यक्रम में जब बड़े अभिनेता सदाशिव अमलापुर के

0: आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बर्फ नहीं दिख रही है। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के धंधा में जब तक न लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को स्वरूप अलौकिक संसार में ले

0: विविध भारती पर इस समय प्रत्याशी ने दिया और सखा सुन रहे हैं सबसे पहली तारीख तो और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
1: डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी इसे देखेगी पढ़ेगी तो आज के आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का, माँ डायरी लिखे पिता डायरी लिखे तो बच्चे सुन रहे पढ़ रहे हो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती है। उस वर्ष आपने उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब हर चीज नहीं सब कुछ सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात पूछी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी, जैसे कि आज शाम रोज की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में खूब अंधेरा उतार जाने जैसा ही खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है, मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया, चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्में गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब

0: जा रहे हैं ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहाँ भी आप डायरी लिख सकते हैं। बोल के टाइप करने
1: की बिल्कुल मैंने हमेशा आपसे लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा है, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर देना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटा पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही है, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते हो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। बाकी सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिखा।
0: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता है,
1: बहुत ईमानदारी से,
0: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखे सच लिखे, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग डायरी भी आत्मसाधा में लीन होकर लिखते हैं अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सच को सच की तरह लिखे, झूठ को झूठ लिखे कि ये गलत था,
1: जीवन में क्या बिताया।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में मतलब ये था, नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन। मैं तो एक्साइटेड हो गया था और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोट पैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। कलम से जो बैठ के लिखते हैं तो जो हौले हौले जज्बात लेकर के आते हैं कागज पर चमकते हैं तो वो बात निराली होती है, लेकिन न से तो बेहतर है कुछ तो, इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोट पैड पर लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, और जैसे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखने मैंने 8 क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर के दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी बात है मुझे, और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
0: अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। अगर आपको भी लिखनी चाहिए, गाना सुनना चाहिए।

खत लिखे, खत लिखना भी आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए जो इस भाषा ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की, मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियाँ आने शुरू हो गई और एक दो नहीं बहुत ढेर सारी चिट्ठियाँ आने शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले कौन सी वाली बाद में ले, वो आठ फोन की उठाने वाले नौकरी करना पड़ेगा। तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी

0: बताइए ला सकती है क्योंकि ये आपको रहने को जाके दाल चुराल देंगे आपको दाल रहने देते हैं तो लेकिन वो ये कह रहे थे ममता जी की जो उस तरह की डायरियाँ बड़ी घुसमी डायरियाँ आती थी और कुछ डायरी ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी उसमें वो स्पेशल खास
1: वो अभी भी आती है
0: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है कोई अवश्य कार्य नोट करता हूँ 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 47 लोग सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों कहाँ रुके भोजन का मेनू सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास की याद ताजा हो जाती है बिल्कुल सही
1: बताया
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है तो डायरी लिखने से वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ अक्सर स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ क्या बात है जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं लिखती रहती हूँ तो मैं हंसती कह देती हूँ बस ऐसी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ हम अमूमन क्या होता है कि चीजें स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं सामान रखते जाते हैं भरते जाते हैं कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं
1: हमें याद है ममता जी जब आपने बुजुर्गो

0: तो वो डायरी इस तरीके का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं। तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति में तो बहुत जरूरी है, पढ़ाई की बातें, गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत तरीका जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे से सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत तरीका से जुड़ी जो बातें होती जानकारी वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे। बहुत ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन। तो लेकिन हमारे साथ ही लिखना है कि डायरी इतना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
1: इसका संगीत सुनते रहे तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है।

0: सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
1: मंजली जी, एक हमारे श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके घर रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्द है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्द है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
0: बिल्कुल, और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था प्रोत्साहन,
1: डायरी लिखने के लिए इस तरह का
0: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन दिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाती है।
1: बिल्कुल, अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, अपने भाव सहज रहती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो आपके मन में भी वो भाव ही पैदा करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हम साथी भी लिखने देखिए प्रोत्साहन कर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथ लिखते हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक व्यक्ति को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज सबके साथ होती है,
1: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता के बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मेन नए सिखा ही देते हैं, यार इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मेन नेक निकालना ठीक नहीं होता, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और हमारे साथ ये कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के खोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वो कुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जो बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
0: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है। और हमारी खाती लिखते हैं पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह

गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, उन्होंने साल 1917 से

0: उठा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड बात, इन्होंने अच्छी बात लिखी
1: है।
0: और मेरे साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपने को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि जो ऐसी डायरी नहीं पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर व्यक्ति एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ चुप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के

कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ें थी और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि एक

Jackson har skrivit det här. Det är därför det ser ut. Att en cirkel som låg matchen vi hört förra att det skulle ge det. Man har sagt att man inte skulle se att det är det som är det. नमस्कार अब कृषि के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य की पारंपरिक कला और उत्पादों को बड़ी वैश्विक पहचान मिली है। जीआर रजिस्ट्री ने राज्य के ऊंचाई स्थल डोकरा और जादू पत्थर पेंटिंग समेत 11 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई उत्पादों की कुल

कार्य होती है। रांची आरएसएस कार्यालय हमले पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए चलाई जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी की साजिश कहा। इधर रांची एसएसपी राजेश रंजन ने बताया कि पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई है। राज्य का पलाश ब्रांड और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बिरसा हरित ग्राम योजना से राज्य के 2 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार मिला है। इस सीजन में करीब 52,000 एकड़ बागानों से 50,000 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। पलामू के GLA कॉलेज परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता बाइक रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं वरिष्ठ विद्यालय समिति ने हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स स्कूल को देश में 21वां और झारखंड में 2वां स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में स्कूल ने 93.30 स्कोर हासिल किया। रांची के खेलगांव में द्वितीय साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसका उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आपकी की राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम की जा रहा है
1: पॉपुलर हुआ करता था उस समय और जब ये सब क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पर आती थी वो सुनते थे और टेलीविजन तो उन्हें बहुत कम हुआ करता था किसी एक घर में पाया जाता था तो

0: अभी जो है ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विदेश कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों की काम किया?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पर, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके तो मैं ऐसा कहने कि मुझसे सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहाँ शायद ही कभी बच्चे से सवाल किया जाता है। इट्स वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन कि क्या बनेगा। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहाँ ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं। बल्कि सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
0: और कई परिवारों में तो खूबा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं, और बच्चे को पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी तो मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहाँ वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है, छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछता क्या बनना चाहते हैं। क्या बनना है अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी लो कम से कम। मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं

0: से बात करना तो कैसे बात कीजिए?
1: जहाँ मैं पैदा हुआ पूछा वो खेत खलिहान वहाँ बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में, बड़ी शांति है, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या मतलब बाग बगीचे वहाँ पे, लोगों की संख्या बहुत कम। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसमें शायद कहने आप या मैं पीछे से कुछ लाया हूँगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शक्तियों को देखा हूँ, मैं पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मस्जिद बना जो है वो आपको बड़ा पसंद है।
1: हाँ वो है
0: करपन, वही इतनी की जो होती है अलमा जो एक स्वभाव का होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे
1: बिल्कुल मतलब इससे बड़ा कुछ मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी जाता है ना, इस सच को हम उसको सामना करने वाला कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, क्योंकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके, हाईवे पे कहीं गाड़ी रुक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेहरे डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसे वैसे कहते हैं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जीने, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को संग के साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके किनरी में तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
1: हाँ क्योंकि बात अब चल रही है पलों की। हाँ एक गाना आपको बन गया, कौन सा? पल पल दिल के पास,

0: बाकी और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत पर नहीं होती है, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आस पास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर सुना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग भी क्या सुना, वो सोचते हैं बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं एक अंकुरण हुआ, नवा शर्मिला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद मैं थोड़ा बेशर्म हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिनेता बनूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूँगा।
1: घर में भी कोई नहीं था इस चीज़
0: में? घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउस वाइफ, पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज़्यादा मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही बहुत ज़्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और क्योंकि वो गांव में रहते थे उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वोकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज़्यादा संग रहा है, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलन टाइप थे, तो हो सकता है वहाँ से मुझे ये मलनपना मिल जाए, लेकिन तभी अपने वहाँ से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहाँ पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया कि हमको भी यार रोल वोल दे रहा है क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया और वो मैंने पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइने हैं ना, ये इंस्पेक्टर लाइन लिखा है, सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहाँ से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे घर ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूँ यार, मैं थोड़ा थोड़ा जो थोड़ा कुछ थोड़े ठीक से नंबर लिया हूँ, 40-42 नंबर आते हैं उनमें से, बहुत थोड़े बेहतर हो जाए, पिताजी खुश हो जाए। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, ऐसे सुना होता नहीं आपकी जुबान से जो बात निकल गई है तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने वाले, अब तक की बहुत बड़ी गलती थी लाइफ, तो ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए, इससे मना करूँ मैं। तो अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ जगह कि खाना मैं कोई बहाना करने के लिए मैं मना करूँ,
1: कोई नर्वसनेस नहीं,
0: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी मुझे, तो दे रहा है मैं क्यों गाँव, ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमारे रोने को, और बात वहीं खत्म हो जानी थी, बट हुई नहीं थी। ये मेरी अभी समस्या का कारण है।

0: कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगे,
0: कुछ होने मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आया, इसमें मुझे बहुत मजा आता कि कोई मुझे ना मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती है मतलब सब लोग चले जाते हैं यार अभी कहाँ जा रहे हैं यार खेलते ना मैं थकता नहीं मुझे इतना मजा आता था खेलने या फिर मैं अकेला रहता था अकेला घूमता हमको एक छोटी जमीन मिली थी यहाँ पे हम सब्जियाँ उगाया करते थे मैंने बहुत सारी सब्जियाँ हर तरह की सब्जियाँ उगाई हैं बचपन में और जो कुआँ था वहाँ से पानी निकाल के उसमें देते जब वो काम करता था इतना कहें स्वाद मुझे किसी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था और सिर्फ इसी बात में और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आई यहाँ तक जा सकते हैं इस बात से मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद यानी कि उससे पहले

की तरह भी आप

0: जाए और काम माने, और जाए कहाँ, सड़क पर कोई घूमता नहीं, तो पड़े रहे मतलब घर में। और सिर्फ यही सवाल किया कैसे, मतलब करें होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो, बनाया है तो अच्छा तरीका है यार, फोटो वोटो खिंचवाई, शक्ल आप ठीक चाहे जैसी भी हो, फोटो चाहिए, फोटो तो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस आते हैं, फोटो तो बांट दिए, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज है, कहाँ पे आपका क्या होगा, आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया है, एक ऐसी शक्ति को नाम यूज करना है, उसके बिना कुछ होता नहीं,
1: जिस चीज को आप मानते हैं
0: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब चीज है, एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को कहता हूँ ना कि हमको वो बहस नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप कुछ हैं, और हम तय कर रहे हैं तो हम ही हमारे कंट्रोल में हैं। तो ऐसी किस्मत की बात कहनी चाहिए कि चीज़ें बननी, वरना ऐसा मेरे जाने माने कलाकार हैं वो सब यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत ही मेरी मुझे काम मिल गया और किस्मत ही कहने होती है कि लोगों को अच्छा लगता है।
2: विविध भारती के इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजयराज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान मिली आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देखकर, तो बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी थोड़ा सा, फिर से हम फ्लैश बैक करते हैं, वहाँ कैसे किसने किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है। साक्षी कला मंच एक अमित्रो थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें मुंजना है कि बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं, विदेशी नाम जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर कोई है, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया था, थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम था, पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मज़ा आता था, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, इतना ही मेरे इसका क्या मतलब है, इसका क्या तो क्या होता है, ये क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे लिए सब मुझे से कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था बात करने में, छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक रोमियो मैंने एक बाहर कर लिया जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिला। अचानक यूँ कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो मैंने देख लिया मैंने हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छुटभैया इसको कह रही, इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और ये बड़ा बढ़िया हो गया, और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम, मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जेन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपर्टरी चीफ हुआ करते थे, बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था दो तीन बार देखा और उनको बड़ा पसंद आया, मुझे बुलाया कि सुनो जी ज्वाइन करना चाहोगे 3,000 रुपये मिलेंगे, 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया, मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है, 18,000 में इतना इतना इतना नहीं, मैं वो आंकड़े में चला गया, बाकी वो क्या बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं मालूम। ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूँगा। ऐसे वहाँ मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट

घूमते रहेंगे, क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं इस तरह की अब जिक्र कर रहे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं। क्या अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं अगर इसी को कैसे होंगे चाहिए।

निकाल दें और ऐसा हुआ नहीं तो दो साल के लिए फिर मुझे कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया तो उसके पास से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया और पूरा एक समय ऐसा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम रिसेप्शन में मुझे दिया और इस दफा

0: ग्रीन था, मोहम्मद रफी साहब, पापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सामने से मिल पाया मुझे। काबिलियत थी लेकिन बहुत अच्छे बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता है कि गेहूँ में घूम भी फिर जाता है और एक गेहूँ का ही आता है।
1: अभी है, अभी मौका है और ज्यादा अच्छी ड्रामा के लिए पेश करने का। आपकी तरफ से आपके तो ठीक है तो वो सुनाइए, उसके बाद में फिर बच्चों पर फिर कैसे अभी

रहती है, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे जाने का कोई गंभीर बात नहीं है।

मुंबई सिटी की कुछ कुछ काम मुझे मिला। करियर में मोड़ आया काम की ज़्यादा चर्चा जिस बात की वो मॉन्सून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है और वो फिल्म नफी साहब मुझे कहा था कि आप मेरा दूसरी जाकर मिलना और नफी साहब से मेरी मुलाकात जैसे टी के दौरान हुई इसलिए वो देखने आए थे अग्नि और बखा इसलिए था जो पसंद नहीं है मेरे को वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नफी साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा

0: तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले किसी को, उसके बाद उन्होंने मुझे बताई मुझे मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बस वहाँ से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने ठीक है
1: कर दिया था बॉम्बे। और मुझे बड़ी अच्छी इच्छा से जानने की वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय, जब मुझे फ़ोन आया था मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहाँ पर था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे इस पर्टिकुलर डेट में आना था, मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया तो मैंने उस दिन फ़ोन किया मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे हो गया मैं उसको आ नहीं पाऊँगा, मैं तो कल जाना है नहीं को शाम का टाइम था, तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी, हम वही आखिर था उससे मिलना और होटल में मुलाकात होनी थी। तो मैं नीचे बैठा काफ़ी देर तक कि मैं कैसे पूछूँ, मतलब किससे यार

0: postoran macam yang lain itu juga dia mana macam computer macam oleh semua
1: orang tu kau tahu boleh do dikorek juga
0: mana boleh kita kita pun kebasi mana kau dia dah ni bahasa tu tu dia satu jam untuk start rehana kuat
1: कुछ भी चीज़ तो उन्होंने पूछा कि करेक्ट हो रही है
0: हाँ ये सब बताया तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ और ये सारी बातें भी बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है हो चुकी है एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है तो ठीक है जब मैं कमरे से निकला बाहर पता नहीं क्यों मुझे लगा ये रोग

的那些鬼啊，他这个鬼怎么，他们他们是二等人，他说那是给钱，我给他多少钱呢？把这什么的，他那个工一天只做一活，就这样，每天是不务正业，嗯，怎么比他去干工好点？我们不能这样子去干工呢。我们说，阿天比他他不听，我一开始来干工，我不干那个活干工了，就是这样子。आपने मेरे बारे में सोचा उस समय पहली बार थी इसको बोलता तो खैर वो समय चला गया इतना समय उन्होंने ये किया उन्होंने मुझसे समय मांगा सात दिन का उसके बाद वो बताएंगे मुझे अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे मैंने कहा ठीक है उसके बाद वो समय पीरियड चला गया मैं भूल भी गया बात उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में जो मेरे साथ तीन लोग जो काम करते हैं उनमें से एक वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई मेरे घर पर ठहरा उसने आया रिहर्सल मीडिया की टीम को हमें

0: रोल हो गया हम दिल्ली चले गए
1: शूटिंग का हुई चीज थी
0: और
1: उसी का पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा थी
0: नहीं उससे पहले मैं फिल्म करता था उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था अब भी कर चुका हूँ भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म
1: था भोपाल एक्सप्रेस
0: हाँ ये मेरी चौथी फिल्म थी फिर शूटिंग शुरू हुई और कब शूटिंग खत्म हुई कब क्या हो गया पता नहीं चला
1: और जो रोल आपको बड़ा चर्चित हो गई थी
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटे छोटे चीज़ें भी काउंट हो जाती हैं और बाकी बड़ी खूबसूरत फिल्म मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को बेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है जो अब दिख रही है आपको उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइफ वेलकम ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है बेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई एक प्लेटफॉर्म दिया गया उसमें काफ़ी घुमा हूँ जो फेस्टिवल सक्सेस होता है उसमें मेरी इस मॉनसून वेडिंग रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो चली है उसमें काफ़ी हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह रहे हैं दुर्भाग्य कह रहे हैं वो रिलीज हुई है बहुत सी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी वो काफ़ी रही है फेस्टिवल में
1: इसमें आपको ऑटो वाले
0: हाँ मैंने वो सब देखा है तो अभी वो एक स्टेज जो मिला है इंडियन सिनेमा को उसमें इन दो फिल्मों का बहुत आता मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीब साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने गुजारा होगा
1: आपकी पसंद क्या है
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है गुलजार साहब ने कमाल दिखा है मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूँ मेरे हिसाब से तो वो बड़ी अजीब सी बात हो गई
1: गुलजार साहब की फिल्म खामोशी बहुत पहले उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है बताइए उसमें बढ़िया गाना

0: बिल्कुल लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे। और एक मेरे ख्याल से दिल्ली में आते हैं, वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और क्योंकि आपकी रोजी रोटी भी है, आपका प्रोफेशन भी है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस पिक्चर में बड़ा मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
1: लेकिन जो आपने अब तक बताया उस चर्चे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देखा हूँ, उन्हें जितने भी नाम मैं देखा हूँ, ग्रेजुएट जो है पास में बड़ा ऑफ बीट से है सर।
0: हाँ, कमर्शियली जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी ज़्यादा कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ।
1: ये तो पानी है कि ये सिनेमा की जब बात करते हैं, सारी के सारे भारत में इकट्ठी बहुत करते हैं, और जाहिर है कि इसकी बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी करती हैं, क्योंकि सिनेमा में बीच में देखता हूँ बहुत बदलाव हुआ है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा के सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए दृश्य कर रहे हैं, कहानी को नया आयाम दे रहे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीज़ें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीज़ें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियाँ जो है उनको भी कहने का खतरा मूल्य है। लोग बेशक सुबह फिल्में चले निकल लेते हैं, अच्छा तुम्हें गाने कम से कम आते हैं हमारे साथ बिल्कुल इन दिनों आते कर रहा है।
0: अभी एक फिल्म है जो एक हिंदी की कसी फिल्म बन रहा है, वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने में उसके लिए जा रहा हूँ। रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
1: जब तक कुछ महसूस किया आपकी सारी फिल्में की और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है,
0: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है। उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उसमें काफ़ी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीज़ें हैं वो। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट 90% चीज़ें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफ़ी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं,

सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कहानी से कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि कहानी इम्पोर्टेंट है। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इम्पोर्टेंट है ना कि कहानी इम्पोर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है

0: एक ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अब बदल रहा है।
1: देखिए भाई, आपके लिए भी चीज़ एक रोजी रोटी का जरिया, लेकिन फिर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से किया है। लेकिन इस सिनेमा की जो हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीर तक है उसके लिए?
0: मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में पता करना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हम जो सोचते हैं समाज के लिए, ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज़ है जो रोक दिया?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग सिनेमा, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी, हाँ अक्सर वो आकर्षण सिनेमा हॉल से छू सकते जाता है। सिनेमा का जादू, उसका टेलिस्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चल गया है। शिक्षा नहीं हुई बावजूद इसके
0: लोगों ने ऐसे कहना है कि जैसा मैं कह रहा है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो सिनेमा में सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बड़ा फिल्में उठाए हैं

से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग पी के ए नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक सिब्बर ने दिया और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का कार्यक्रम समाप्त।

0: प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के रूप में समझने।
1: नमस्कार, मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। गिरिडीह के धनवार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से स्थानीय और ग्रामीण बच्चों को अब घर के पास की गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय शिक्षा मिल सकेगी। पलामू व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म और जानलेवा हमले के 23 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खूंटी पुलिस ने चर्चित राधेश्याम साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। छतरपुर में आज जारी कुख्यात के खिलाफ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिला जज ज्योति सिंह ने समाज के लिए अभिशाप बताया। राज्य की पारंपरिक नचनी नृत्यांगना बूटन देवी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के बुंदो से उनके घर जाकर उन्हें लोक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृतज्ञता पूर्वक सम्मानित किया। राज्य में मानसून के बावजूद जून महीने में सामान्य से 57% बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा और चतरा में सूखे जैसे हालात है। हालांकि मौसम विभाग ने कल से राज्य भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी का भी है। कुछ चमकीले लम्हों को हम संजो लेते हैं स्मृतियों की तिजोरी में, कुछ उदास लम्हों को अपनी जिंदगी की किताब से बाहर कर देते हैं, कुछ लम्हों को हम अपनी जिंदगी का आईना बना लेते हैं और देखा किया करते हैं खामोशी से।

से किताब से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगे, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे, आंखें मिली, दिल मिल गए, तो दूर दूर रहकर दिल को

बेटियों के लिए प्रसिद्ध देवी कहा मानने वाला वो उन्हीं के पहलू में जा गया था। दिल को क्या खबर थी उनके संग मन्नत का धागा बांधना मुश्किलों के पुल से गुजरना होगा। मोहब्बत से बावरे हुए मन ने न समझी ये बात और चढ़ता रहा मुश्किलों के पहाड़।

स्वच्छ रहेंगे कार्यक्रम छाया जी। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ लोग एक साथ दिल की धड़कने गाएंगे प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसास उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज

जिंदगी में जब चलती है प्यार के बयार, जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है, लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की तो प्यार के रथ पर सवार होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार बोलती है, प्यार ओढ़ती है, प्यार पहन अपने सपनों की नगरी में चल पड़ती है, निकलती रहती है।

आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल नदी की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से फोटो पर देखता है मोहब्बत का नगमा।

सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वानंद कीर्तन की आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की फिल्म का नाम लगी रहो मुन्ना भाई।

0: के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आपको,
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने वाले पेंटर अखिलेश से एक बात की,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे रवि भारती पर
2: खामोशी दमयंती कल अब सुनिए फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार

0: कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिटी थी
1: उजाली उनकी जादू की। इस कार्यक्रम में जादू वाले अभिनेता सदाशिव अमरापुर के

थी। श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में ले जाती है। पंडित रोनू मजूमदार, संगीत संहिता मेल श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में

हैं। मानसून में भले ही सभी पंचायत पर में बारिश के पहले सहारा का आगाज नया किया हो, लेकिन पंचायत का मौसम बस दस्तक देने वाला है। खुशहाल और गर्म

or for you to do that.

के बावजूद दिल्ली सत्ता के और रांची के खेलगांव में फुटबॉल चैंपियनशिप

को औपचारिक रोजगार से जोड़ने वाली इस योजना के हो चुके हैं।

Thank you.

चुनौती देने वाला है। यहाँ की राज्य की शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन की सरकार निकम्मी सरकार और निकम्मी सरकार से अपेक्षा करना मूर्खता, इसलिए इसकी जाँच NI से होनी चाहिए।

0: भारत में कुल 200 विद्यालयों का इस कार्यक्रम के तहत चयन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय का स्थान 21वां है। और इस उपलब्धि के लिए हम लोग साल भर से प्रयास करते आ रहे थे। विद्यालय को जो है वो भारत सरकार के द्वारा मानक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और इसके साथ ही 1 लाख की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बच्चा हरित ग्राम योजना से राज्य

Instagram, Facebook, Twitter, and Instagram.

itself is for what it is. It's subject to others as well. But

तो लोगों ने कहा कि अब तो बात कर रहे हैं बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में कर देते हैं।

0: और जिसकी की रामा शेट्टी की।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिटी है।
0: उजाली उनकी जादू की। इस कार्यक्रम में जादू वाली अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की जादू

0: बीमारी के गंभार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ उमड़ रहे हैं मगर बर्फ नहीं रही है। वो जो घुटन है उस घुटन को बीमारी के गंभार में जब तक न लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार।

इंद्रधनुष के अंतर्गत पृष्ठ के कार्यक्रम राज मंगेशकर और मोहम्मद रफी की बोल के संगीत शंकर जयकिशन का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ी पर आधारित वक्त संघर्ष जिसके गाने में अमिता भोसले और महेंद्र कपूर ने रवि के सभी निर्देशन में इस गीत को लिखा है।

0: गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आज से बहुत अपॉर्चुनिटी
1: जाली

सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ट का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।

0: उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप की दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आप सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
1: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन। आप पहली बार यहाँ खाने आए हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना सीधे से शुरू होकर सूप पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।

0: इस तरह आप अपने मेनू कार्ड में इसका रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की चार्ज भी बढ़ेगी।
1: थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं, मगर हमारे यहाँ

0: और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने के लिए दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे पैक करके भिजवा दूंगी।
1: ओह वंडरफुल वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। धन मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे मिलेंगे।
0: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान लो तो बड़ी आभारी रहूंगी। खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें, बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
1: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुँचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
0: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैठा आएगा

0: सारा अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, मैं तो सारा सब कुछ जलकर खाक हो गया।
1: अब इस तरह रोने से क्या होगा बालको, हिम्मत मत हारो, मेहनत करो और फिर से उस कौम को अनाज से भर दो।
0: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, बहुत से सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
1: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं बालको, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
0: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग में जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
1: देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोदाम जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ भरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ में धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात कीजिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में जाते रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस कॉम को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसे इकट्ठा करूँगी। बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
0: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी है, और 10 महीने तक तुम से अलग नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता।
1: वॉल्टर, मैं लड़के होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, तो 10 महीने की तो बात है।
0: हाँ?
1: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
0: 10 महीने सारा सोच कर मन कांपने लगता है।
1: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर। और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आज पता
0: लगा।

0: सही महीने से बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
1: तो ऐसा कहते हैं कि इसे बड़े साइज में काफी तेज होकर फ्राई कर देते हैं।
0: बिल्कुल

She could smell it up. कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वाल्टर कल जरूर आ जाना। वाल्टर तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वाल्टर कल जरूर आना।

0: थे या तो आप कहोगे
1: तो ऐसे बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो, लेकिन तुम कहाँ हो ऐसे?

0: मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
1: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। इससे अच्छे ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
1: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
1: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया।

0: शादी के बाद वाली सब्जी देकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं जहाँ।
1: हाँ मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
0: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वो अक्सर कुछ आधा टाइप होता है।
1: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्सर कहाँ से आया?
0: लेकिन साहब जी, उम्र की सब्जी टाइप की है, उसे जरा पढ़ो तो।
1: क्यों?

आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम मुलाकात का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा वाहिनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ट्रोल के लिए ठीक है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हें

0: इस बारे में सुना हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ मेरे भारत की बात।
1: कार्यक्रम में आप सभी का मिला फिर से स्वागत है। अपनी फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गीतकार मयूर पुरी, संगीतकार प्रीतम

की क्यों उठाया। कल के सत्र में उन्होंने तेजी से गुड़ती हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का

sometimes

întrebare va rămâne la scris, la

0: का प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियाँ, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने

0: जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी कदमें भारत की कुछ प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपने सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: कहा था कि मुझे इस रोल के लिए स्वीकार किया। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आपसे बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है।
1: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जब हमारी अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की

0: क्या हो रहा है?
1: इक्कीस जून से इस बारे में जुड़ा हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो भारती पर।
2: अपने मोहम्मद रफी और साथियों को आदि बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है नजर सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

सुरक्षा सुविधाएं इसकी सुचना थी आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया मिश्रा के साथ।

0: संस्कार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, लय और मध्यम शार्प लय कि अब इंसान को उठना है, मुहर धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल घोष शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं है। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अभी हमको जो जर्रा भी हमारे पास नहीं है।

0: identity production की मिस्टर संभव आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया।
1: इतना ही नहीं क्या, मैं कहता हूँ कि आजादी से ज्यादा दुनिया क्या सभी बिना निगाह उठा के देखिए तो बदमाश क्या को नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा सही मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन क्या सभी, क्या जाने क्या होने वाला है दुनिया। आज खाने के बाहर चले गए, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हूँ। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस के इलाके में भेज देगा उसको। अच्छा जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ठीक बात करती हूँ जी, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ, मैं जी देखा

0: सकता हूँ। मैं तुम्हें कहीं देखा है। शर्मा जी के घर।
1: कौन शर्मा?
0: अरे भाई वो तुम्हारे जी के हैं।
1: आपका मतलब वर्मा जी के हैं?
0: वर्मा जी। वर्मा शर्मा विचार है। दोनों मेरे जिगरी दोस्त।
1: क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
0: 225 रुपये। 225 रुपये। और डियर मेरे सलामत और भत्ता
1: 50 रुपये।
0: 50 और 225। 175 रुपये मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं।
1: जरूर सही है। सलाहकार जरूर है।
0: मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूँगा।
1: क्या नाम है तुम्हारा?
0: राम प्रसाद। राम प्रसाद। मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूँगा। तरक्की कराने का इंतजाम।

0: उतनी के सही जीवन की सबसे ज्यादा फिल्म
1: खबर बस यही है कि जिंदा है तो यहाँ कैसे पर कलकत्ता हमें रात नहीं आया दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं आज यहाँ कल वहाँ तुम कहाँ जा रहे हैं
2: ये भी कुछ तय नहीं किया
1: मकसद
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चंद्रा को
1: तुम रहे वही देगा अरे कहो इतने दिनों के बाद मिले हैं मुलाकात को रंगीन किया जाए क्या ख्याल है अब तो सोडा मिलाने के दिखाई ले रहे हैं क्यों फजूल छोड़े पैसे जाया किया जाए लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी थोड़ा पानी मिला लो
2: मैंने बिना छोड़ दिया है सुनी बाबू
1: किसी ने अपने सर के कसम तो नहीं दिलाई
2: ऐसी कोई बात नहीं है मैं बस नहीं पीऊंगा
1: अरे अरे मगर ये गिलास क्या ले जाते हो अब तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया अरे कुछ कहते तो नहीं
2: क्या कहूँ चुनी बाबू मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता अब तो उसको भी अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता
1: लेकिन क्या दुख है मैं अच्छी तरह समझता हूँ मेरा लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम्हें ही सुख सकता है जब इस दुख की आज में बढ़ती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है इसी आज के अवतार को बनाया जा सकता है और कोई क्या है
0: तो 1956 में कई जाते रहो जिसमें मोतीलाल के अभिनय की

0: राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है।
1: सॉरी
0: हाँ, क्या कह रहा था? राजकुमार बड़ा अभी लगा है, बड़ा बड़ा है, बहुत मन है।

0: जो है तुमने कहा था डेढ़ महीने से?
1: तुम्हारे ही काम के लिए गया था।
0: मेरा काम?
1: हाँ, तुम्हें याद नहीं है पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राजा नगर मैंने भेजा था उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर पोस्ट ऑफिस में डाक्टरी की नौकरी कर दी और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ से दर्शन करने के लिए आया।
0: लेकिन किसी इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
1: डर लगने लगता है क्यों? वो
0: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था, इसलिए तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाते देख मेरा सोमभाव कांपता।
1: माँ तुम बहुत ही बोली हो, मैं कोई असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो अफवाह है। देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
2: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण

सदा बहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में

को मंडपी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामने प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर किसी को चुपचाप से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना।

हर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक नीचा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है।

मैं खुद सफल है क्या? कुमारी बेचैनी उम्मीद और रोमांच का अद्भुत मिश्रण। मन बेचैनी से अपने प्यार को

उठता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हो अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसकी आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार